0: श्रोतेओ नमस्कार। हरिभक्ति परायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरिभक्ति परायण भानुदास महाराज देगलूरकर, धुंडा महाराज मठ, उत्पाद गल्ली, पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरिभक्ति परायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपाशीर्वादानं सालंकृत आहे।
1: नारदा मुनिवरा।
0: सुजन हो, नारद भक्ति सूत्रामधलं 72वं सूत्र

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

साहब मिले। मिलते ही वो कहने लगे, ओह माय डार्लिंग आई लव यू। मैं बोली, पर मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। तो हंस के बोले, वैसे मैंने भी आपको कहाँ देखा है, मैंने तो आपके बैंक बैलेंस को देखा है मैडम, क्योंकि मैं बैंक मैनेजर हूँ।

मजनू मिले। मिलते ही वो कहने लगे, पाने को तेरा प्यार, कर सकता हूँ समंदर पार, जो तूने किया इनकार, तो हो जाएगा बंटाधार, जान दे दूंगा जहर खा लूंगा। मैं डर गई, हाँ कर गई। मैं बोली, अभी चलो मेरे डैडी से मिलो। तो वो बोले, अभी अभी कहाँ, बाहर बारिश हो रही है। मैं भीगा और मुझे जुकाम हो गया तो।

0: वो तो
1: क्यूट है ना।
0: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
0: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
0: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
0: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है।

0: ही के वासे दुख के भी रासे दुख के भी रासे
1: जा हमें के वासे दुख के भी रासे।

अब मान भी जाओ, चाहे मुझे बुरा समझो चाहे मुझे अच्छा समझो, मैंने सब कुछ तुम्हारा प्यार जीतने के लिए किया। ये ना किसी गरीब का प्यार है, ना किसी अमीर का प्यार है, एक इंसान का प्यार है जिसने तुम्हें अपने दिल से प्यार किया।

0: वाली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। माई इस लॉटरी का नंबर मिला दे और जल्दी से बादल की नैया को पार लगा दे। अरे पांडू अभी तक मोतिया लॉटरी का रिजल्ट लेकर नहीं आई रे।
1: आती होगी गणपत भैया, तब तक माता जी का आशीर्वाद देने ले।
0: हाँ ले लो ले लो। जय जय जय जय जय जय जय हो।